0: FM-द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: बता देना हमारे स्टूडियो घड़ी में बिहानी

0: कोयला अनुहार के कमिलो पाई में खाई दिना सुनो चले
1: रक्तर पता में से पता लाख काई सात पाँच दाल कुरियाना आरा मछी शिकार वो फल फूल आयुक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड कम करी संतुलित खाना

किसान पहले समूह बनाया झोलमल गरीब जैविक किसानी उत्पादन वस्तु के खेती में

responde प्रतिक्रिया धारावाहिक उच्चपदला के रूप में लिखे हाईकोर्ट का प्रयोजन जारी भारत सरकार ने 16 और 17 वर्ष का किशोर किशोरी का मध्यरात देखि बिहान 6 बजे सम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोग में कस्ट लगाने प्रस्ताव सार्वजनिक

0: नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल्ला चौधरी, बस्ती नगर पालिका वार्ड नंबर 5 और प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव उद्योग मंडल नंबर 8
1: एक प्रोडक्ट सेवा करते हैं, उनका अवश्य धन्यवाद।

0: अगला महीना भी शादी से तबियत चाहते हैं। तो फिर से सब फिर आ गया सर। नमस्कार नमस्कार
1: पानी कम अवस्था पानी कम लगातार

0: विदेशी स्तर पर टटकाए अवलोकन तो करेगा अनुवांशिक कमी लगो पढ़ाई में ध्यान दी जाए समस्या न
1: रफ्तार पता में ऐसी बदला कैल साग पात दाल मृगड़ा आरा मछली शिकार और फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई।

अनुसार तीन जना तीन तीन थो जिला पढ़ा बैठी है उसे प्रहरी परीक्षा की घटना में से 365 जना प्रहरी परिचालन कर चुका है। अब क्या कर हम सब बुलेटिन के हम कैसे हैं

की शरीर पर रक्त कमी अर्थात रक्तअल्पता देख पड़ा रक्तअल्पता मिलती स्वतंत्र कराने लगता तो करेगा अनुहार की कमी न हो पढ़ाई में ध्यान दीजिए समस्या रक्तअल्पता में से बचत लाख का साग पात दाल गुड़ी ग्यारह आला मच्छी शिकार और फल फूल आयुक्त खाना नियमित रूप

0: 上开始发展。
1: बालिका को तथा राजस्व संतुलन सेवा सामने एक प्रदेश मंत्रालय अस्थायी रूप में बंद कर बालिका सार्वजनिक सूचना जारी करके आर्थिक वर्ष 2082-83 का वार्षिक हिसाब मिलान तथा आर्थिक वर्ष 2083-84 का आर्थिक एन अनुसार लागू होने लोगों पर तथा राजस्व दर हमें राजस्व सप्ताह प्रतिष्ठ हो अध्यावधिक करना अलग पूर्व से अध्यावधिकरण तथा राजस्व संकलन सेवा स्थगित कई लक्षण हो नगर पालिका के अनुसार सेवा मंडल महानाउक्तिमा कर तथा राजस्व संबंधी कौन के संकलन कार्य संचालन योजना चलेगा सेवा चाहिए वो करदाता होना और चयन सुविधा प्रति नगर पालिका छह मास में प्रति फेर सेवा शुरू पालिका आर्थिक वर्ष 2082-83 में विनियोजित कुल बजेट का 65.2% खर्च कर पालिका सार्वजनिक कर क्षेत्र पर बजेट तथा खर्च विवरण अनुसार कुल 98,34,61,945 बजेट मध्य 64,12,73,445 रूपया 67 पैसा खर्च विभाग आकर्षित 34,21,88,479 रूपया 33 पैसा बजेट खर्च विभाग बाकी रहता क्षेत्र प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक विकास अंतर्गत कृषि उद्योग पर्यटन सहकारी भूमि व्यवस्थापन में 70% खर्च कर गाउँपालिका को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थारू चाँदेबाट 3,50,26,735 रूपया बजेट मध्य 2,42,96,314 रूपया खर्च करना उसने कहा सामाजिक विकास अंतर्गत शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी सर सफाई युवा तथा खेलकूद लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण में 82.44% खर्च करना विवरण अनुसार आपूर्ति संपदा पूर्वाधार तथा सुशासन तथा अंतर संबंधित क्षेत्र में बजेट खर्च पूर्वाधार विकास में 45.98% सुशासन तथा अंतर संबंधित क्षेत्र में 25.06% कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक 73.77% खर्च विभाग गाउँपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थारू आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर
0: आर्थिक

सहभाग नागरिक प्रश्न पढ़ा विकास निर्माण प्रोजेक्ट कार्यान्वयन तथा सुशासन का विषय में जिज्ञासा सुझाव खुलासा तथा सुनवाई कार्यक्रम पालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी उपाध्यक्ष अधिकारी प्रमुख प्रशासन के अधिकृत भजन थारू विषयगत शाखा

आवश्यक पर्व का कारण से कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कर दिए।

0: जो नसा मुटु चेक जाँच पैसा
1: प्रत्येक दिन नसा तथा निम्न सर्जरी हाथ जोड़ी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक का घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए।
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध भा शिशु को मुख बांधना नशा दापूर्वक हाथ द्वारा निचलना बिरमी मुकाना फिजियोथेरापी तथा एकुपेडर थेरापी विधि मशीन उपचार कैदी था
1: नशा दापूर्वक बिरमी मुकन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेडर थेरापी से स्वाहन उपचार कर दे।
0: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था कैदी था। असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र शाह ने महिलाओं की सुरक्षा विकास का लागि हर संभव सहयोग कर सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय में आज महिला

0: நம்மை அதை ஒப்பு செல்லும்
1: एक पटक सेवा करने में बहुत आवश्यक दिन होगा। धन्यवाद।

0: तारीख हो। रक्षा मंत्री को पदोन्नति संबंधी कदम संगे यूक्रेन का विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन भैया टीवी विवरण आधारित रिपोर्ट प्रवनाथ गौरव
1: आज राष्ट्रपति भारतीय जनस्थ ने देश को रक्षा संबंधी चासो

सन्तुलित खाना खाई, व्यायाम सत्य करी, धूम्रपान महिलामा सेतु नरही, तनावभन्दा नियन्त्रण गरी, आजुक निर्णय काली जीवन अजरा, निशाना रोगमा से बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: स्वास्थ्य रिपोर्ट दिया। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे की प्रतिबद्धता घटी, नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसमर्थ रूप में यहाँ कर स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पड़ता करने से कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती।
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच लिखा।
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा। सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध बा। पैरालिसिसो को मुंह बाघ बिना नशा तापक हाथ गोरा रखने चलना बिरमी क्लास फिजियोथेरापी तथा एक्यूपंक्चर थेरापी विधि से उपचार कैसे था।
0: नशा तापी बिरमी के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक्यूपंक्चर थेरापी से सफल उपचार कर दे।
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कैसी था। असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कैसी था। कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्तिया पुरानी पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार।
0: संपर्क फोन नंबर 084400195 और 084400205 बांसगढ़ी बर्तिया। संपर्क फोन 11 94 90।